0: अच्छा गुरु, जब वो ऐसा कहेगी ना तो मैं जवाब क्या दूंगा?
1: जवाब? अरे बांगड़ू, प्यार में जवाब अपने आप सूझ जाता है। कहना अनुराधा।
2: अरे गुरु गुरु गुरु, अनुराधा नहीं, बिंदु बिंदु।
3: अरे तेरी की भूला।
1: कहना कहना
0: क्या?

एक मिनट को ये वाकर पर बंधु बहनों की उधर से आ रहा है, उनको कोई प्रॉपर गाइड या हेल्प करेंगे कि वो थोड़ा सा आगे आकर के इस गेट के पास बैठ जाए, क्योंकि उनको वाकर पर आ रहे हो और इतना लंबा उनको उधर से आना थोड़ा सा सही नहीं होगा। तो उनको वहीं पर गेट के पास एक चेयर दे दीजिए बैठने के लिए, उनको इधर उधर मत

पर अवसर है तुझ हृदय के चरणों में कोटि वंदना। लंबी छुट्टी के बाद, लंबे समय के बाद 14 तारीख के बाद सीधे 24 तारीख को आज धर्मसभा में आशीर्वाद देने के लिए पधारे हुए महाराष्ट्र प्रवर्तक श्री जी के चरणों में हम सभी की विराजमान स्नेही संत रंग विदुषी महासती रंग नौ तत्व की रहस्य भरी यात्रा पे निरंतर गतिशील श्रद्धालु श्रोता ऐसा व्यक्ति गुस्सा कर पाएगा क्या? तो गुस्सा क्यों करते हम लोग? हमने गुस्से को ग्रहण किया है। अहंकार क्यों करते हम? हमने अहंकार को ग्रहण किया है। एक बहुत थोड़ा सा हम कपट क्यों करते हैं? हमने कपट को ग्रहण किया है। हम लोभ क्यों करते हैं? क्या हमने उसको लोभ को ग्रहण किया, किसी करते हुए देखा है? चाहे भाव हो, चाहे भाषा हो, चाहे एक्शन हो, ये तभी हम कर पाते हैं जब हमने उसको ग्रहण किया। और ये ग्रहण करना ही आश्रव है। नोइंगली अनोइंगली सिचुएशन से इंटेंशनली नॉन इंटेंशनली या इंजेक्शन कैसे भी मैंने ग्रहण किया, अपने ग्रहण किया तो एक न एक दिन उसके परिणाम सामने आने ही आने। अंतगण शुक्र की आराधना शुरू होने का समय पास में आ रहा है, उस समय विस्तार से बात करूंगा ही। अर्जुन वाली मुद्गर पानी यक्ष की भक्ति करते समय उसके मन में कोई हिंसा का भाव है क्या? अर्जुन वाली के पिता, अर्जुन वाली के दादा, अर्जुन वाली के परदादा, कुल परंपरा है उसकी। यदि आपकी भाषा में बोलना हो तो कुल देव है उसका, मुलगर पानी यक्ष अज्जी है, पज्जी है, पड़पज्जी है, उसने चुनाव नहीं किया कि मुझे इसकी आराधना करने के नहीं करनी, लेकिन उसके भक्ति रोज करता है। और भक्ति करता है इसका मतलब क्या है? उसको इमोशनली प्रेम से भावपूर्वक उसको ग्रहण करता है। कभी अर्जुन माने ने सोचा होगा कि एक दिन मैं भी मुद्गर पानी बन जाऊंगा? आपके विषय में नहीं पूछ रहा, मुद्गर पाने के अर्जुन माली के विषय में पूछ रहा हूं। कभी अर्जुन माली ने बुद्धिपूर्वक सोचा होगा क्या, कल्पना करी होगी क्या, मैं कभी मुद्गर पानी बन जाऊंगा?

0: विषय है, जो मुद्गर है, वो एक दिन मेरे भी हाथ में आएगी। कभी उसने सोचा था क्या, कभी उसने चाहा था क्या? सवाल सिंपल है या कॉम्प्लिकेटेड है? सवाल सिंपल है या कॉम्प्लिकेटेड है? सिंपल सिंपल सवाल का जवाब कब दे सकते हैं? कभी उसने सोचा नहीं, लेकिन ग्रहण कर रहा था, आस्थापूर्वक ग्रहण कर रहा था, प्रेम से ग्रहण कर रहा था, भक्ति से ग्रहण कर रहा था। पर सेम आज हो रहा है, आप मोबाइल के स्क्रीन पर, टीवी के स्क्रीन पर कॉन्शियसली देखते हैं, कॉन्शियसली आप रिसीव करते, कॉन्शियसली आप ग्रहण करते हो, और जो ग्रहण किया है उसका परिणाम आएगा ही आएगा। श्या यदि इंटरनेट पर उसको दिखा नहीं होता है तो कभी ऐसा कर पाते हो? यदि मार्केट में, बाजार में जितने गुटके की, स्मोक की, ड्रिंक की होल्डिंग लगी हुई है, जो विज्ञापन चल रहा है, वो सारा निकाल दिया जाए, विज्ञापन बंद हो जाए, कितने लोग गुटका खाएंगे? बहुत कम। कितने लोग ड्रिंक करेंगे? आपको लगता है कि आप देखते हैं, आपको लगता है कि आप देखते हैं, लेकिन आप देखते नहीं है। क्या करते हैं? ग्रहण करते हैं। हमारी पांचों इंद्रियां, हमारी और बुद्धि को भी प्राप्त हो सकते हो, स्पर्श से ज्ञान भी ले सकते हो और बोध भी ले सकते हो, रस इंद्रिय से रस का बोध भी ले सकते हो और रस भी ले सकते हो, नाक से गंध का ज्ञान भी हो सकता है और गंध का राग द्वेष भी हो सकता है। यदि उसको लेकर के लाइक डिसलाइक हो गया तो कर्म का बंद हो गया। लाइक डिसलाइक, यदि मेरी इंद्रियों के पांच दो टूल्स है, लाइक डिसलाइक, तो कर्म बंद हो गया। और लाइक डिसलाइक का टूल्स नहीं है, केवल जानने का है, तो कर्म बंद नहीं होगा। इंद्रियों से आश्रय होता है, इंद्रियों से आश्रय होता है, जब तक केवल ज्ञान नहीं होता है। कब तक? जब तक, बोलो, जब तक केवल ज्ञान नहीं होता है, प्रवीण ऋषि का भी इंद्रियों से आश्रय जारी है, कर्म बंध जारी है। दिन में भी, नींद में भी, अंदर में पैटर्न बना हुआ, अंदर में सिस्टम बनी हुई, और जब तक केवल ज्ञान नहीं होता है तब तक ये आश्रम जारी है। केवल ज्ञान होने के बाद भी, केवल ज्ञान होने के बाद भी आश्रम जारी रहता है, बंद नहीं होता है। आश्रम जारी है। तीर्थंकर महावीर का भी इंद्रियों से आश्रम जारी है, काया से आश्रम जारी है, होता क्या नहीं उनका? बंद नहीं होता है। और अपना क्या होता है? आश्रम हुआ कि टेलीकॉल जैसा चिपक गया, उनके पास फेविकॉल नहीं है, अपने पास कौन सा केमिकल है? लाइक डिसलाइक, लाइक डिसलाइक। थाली में एटम आया और फेवरेट एटम को देख करके मुंह में पानी आ गया, और उन फेवरेट देख करके मुंह खराब हो गया, तो फेविकॉल रेडी हो गया। कल बच्चों का शिविर का समापन था, स्मार्ट स्टडी स्मार्ट टीचर। एक माँ ने कल पेरेंट्स को बताया था, एक माँ ने अपने बच्चे का 3 दिन का एक्सपीरियंस शेयर किया, 2 दिन हुए कल तीसरा दिन था। बोले बेटा बिना मोबाइल देखे खाना नहीं खाता, और उसकी फेवरेट आइटम बना होगा तो उसकी भूख अच्छी रहती थी, और अनफेवरेट आइटम बना होगा तो भूख, और बाद में फिर वो शांति से नहीं खाता था, कटकट करता था, ये क्यों बनाया, ऐसा क्यों बनाया। लेकिन बोले कल पहली बार ऐसा हुआ कि बेटा आया, मोबाइल उसने बाजू में रखा और डिश में क्या है इसकी कोई चर्चा करे बिना व्यवस्थित भोजन किया। अब बच्चा सुधर नहीं सकता था कि मां बाप ने उसको सुधारा नहीं था। हेलो, अभी नहीं बोले ना कोई, चार से छह का शिविर था, 2 घंटे का एक कार्यक्रम था, और बहुत सारे लोगों को पता नहीं था, लेकिन जिन्होंने बच्चों को भेजा वे बच्चे जिन शासन के बच्चे हो गए। ये मां की रिपोर्ट है कि उसे बिना कमेंट्स के, बिना मोबाइल देखे प्रसाद ग्रहण कर लिया। यही उस शिविर का टाइटल था, स्मार्ट स्टडी स्मार्ट एज। और ऐसे पूरे चौमासे में कार्यक्रम चलते हैं, चलते रहेंगे। यूज करने वाला यूज करेगा, यूज नहीं करने वाले जहां गणेश शिविर चल रहे हैं वे फिर इस बात पर आ रहा हूं, तुम्हारी इंद्रियां मेरी इंद्रियां 24 घंटे आश्रय कर रही है। अंदर में जैसा पैटर्न बना हुआ है वैसा आश्रय करेगी, आश्रय जारी रहना है। आश्रय बंद होने वाला, आश्रय किसका बंद होता है? केवल सिद्ध भगवान का, केवली का भी आश्रम जारी रहता है। बोलो, तीर्थंकर महावीर का भी आश्रम जारी है, लेकिन उनका आश्रम कौन सा हो रहा है? कह पाएगा कोई? नहीं कह पाएंगे। नहीं कह पाएंगे। इन्फिनाइट आश्रय हो रहा है तुम्हारे और मेरे से, आश्रय से उनका आश्रय अनंत होना है। तुम्हारा और मेरा आश्रय तो लिमिटेड है, उनका आश्रय तुम्हारे और मेरे आश्रय से अनंत होना है। उनकी आंख तो बिल्कुल निर्मल है, पावरफुल है, दूर तक का देख सकती है, जानती नहीं देखती है। आंख से क्या है वो देखती है, जानते किससे? ज्ञान से। तुम्हारे और मेरे से भी उनका आश्रम अनंत गुना है, लेकिन बंधन जीरो है, बंधन जीरो है। बोलो आश्रम बंधन, अपना आश्रम जीरो नहीं है, लेकिन बंध है मच मोर, मच मोर। जो मिथ्यात्व जीव है उसका बंध इन्फिनाइट है, जो सम्यत्व जीव है उसका बंध लिमिटेड है, जो श्रावक है उसका बंध और लिमिटेड है। जो साधु बन गया कपड़े पहन करके नहीं, अंदर की वृत्ति और प्रवृत्ति से जो साधु बन गया उसका बंध बिल्कुल मिनिमम है। एक सवाल पूछे थे आपको, जितना जिस मकान में मैं रहता हूं उतना बड़ा मकान आप में से किसका है? संध्या भवन से तो बड़ो मुझे तो नगर में नहीं देखा अब तक किसी जैन का, इतना मार्बल लगा हुआ, इतना बड़ा और आपके पास ऐसा बंगला हो तो आपका बंध कितना होगा? और मैं वहां रह रहा हूं, मेरा बंध कितना है? आपका बंध कितना है, मेरा बंध कितना है? क्यों? कारण मेरी वहां ओनरशिप नहीं है। क्या नहीं है? आई एम यूजर। मैं कौन हूं वहां पर? यूजर हूं। मेरा वहां पर कोई अधिकार है? आपका घर में यूजर ज्यादा हो कि अधिकार ज्यादा है? बोलो ना यार, अधिकार ज्यादा, यूज कम। अधिकार ये अधिकार से बंद होता है। किससे बंद होता है? अधिकार से बंद होता है। अरे तीर्थंकर परमात्मा ऐश्वर्यशाली समोसर में विराजमान होते लेकिन उनका बंधन होता नहीं है, और थको तो स्क्रीन माते देखो तो भी बंद हो जाए। उठे तो साक्षात आईने देवी आना डांस करे, पर उनको बंद नहीं हुए। हम थका करें तो नमोरे हंता नम डांस करता रहे, लेकिन बंद थको महत्व हुए। क्यों? लाइक डिसलाइक, लाइक डिसलाइक। अभी तुम्हारा और मेरा बंध होना है, आश्रय भी होना है, बंध भी। बोलो, अपना क्लास चल रहा है, बखान नहीं। अभी तुम्हारा और मेरा आश्रय भी होना है और बंध भी होना है। तुम्हारे और मेरे हाथ में केवल इतना ही है कि मैं शुभ का बंध करूं कि अशुभ का बंध करूं, मैं पुण्य का बंध करूं कि मैं पाप का बंध करूं, इतना ही हाथ में। इसके अलावा कुछ भी तुम्हारे हाथ में नहीं। सामने वाले क्या खाना परोसना तुम्हारे हाथ में नहीं, सामने वाले ने कैसे व्यवहार तुम्हारे साथ करना तुम्हारे हाथ में नहीं, लेकिन सामने वाले को अटेंड कैसे करना ये आपके हाथ में कि उसके हाथ में, बस वही प्रबंध करने से। How you tackle? What is your skill? वो स्किल के आधार पर तय होगा कि तुम्हारा पुण्य का बंध हो रहा है कि पाप का बंध हो रहा है। कई कई की बात सुनी और दशरथ की भयंकर पाप का बंध हो गया, इतना भयंकर पाप का बंध हो गया, इतना भयंकर पाप का बंध हो गया कि हड्डी फेल हो गई। और वही बात राम ने सुनी। राम का किसका बंध हुआ? पाप का कि पुण्य का? पुण्य का। वही कह गई। और सफर किसको करना था? दशरथ को, राम को। लेकिन राम को पुण्य का मतलब कैकई ने क्या बोलना, सिचुएशन क्या होनी, सर्कमटेंस क्या होने, इस पर कंट्रोल नहीं है। उसका यूज कैसे करता है ये तय करेगा कि तुम्हारा पुण्य का बंद हो रहा है कि पाप का बंद हो रहा है। और वो पुण्य का बंद हो जाए तो पुराना पाप समाप्त है। पुराना पाप समाप्त है। नौकर मंत्र बोलते हो ना, सुनते हो ना, सर्व पावपनाशनम्। पाप है पास्ट का होता है और मंगल है फ्यूचर का होता है। और नौकर मंत्र दो काम करता है, अतीत का पाप समाप्त करता है और भविष्य का मंगल करता है। सर्व पावपनाशनम्, मंगलानं च सर्वेषु परमं हवैः मंगलम्। कैसे? नमोकार पुण्य। नव पुण्य में नवा पुण्य है। नव पुण्य में नवा पुण्य है, नमस्कार पुण्य। और किसको नमन करते हो उसके आधार पर आश्रय होता है। रिपीट, किसको नमन करते हो, किस इमोशन के साथ करते हो, किस इंटेंशन के साथ करते हो, उससे तय होता है कि तुम्हारी पुण्य का कितना बंद होता है। नमस्कार से पुण्य का बंद होता ही होता है। लेकिन किसको कर रहे हो? नमस्कार का मीनिंग है कि मैं सामने वाले की ऊर्जा को ग्रहण कर रहा हूं। किसको ग्रहण कर रहा हूं? बोलो जल्दी से, सामने वाले की ऊर्जा को ग्रहण कर रहा हूं। और अपमान करने का मीनिंग है कि मैं सामने वाले की निगेटिव एनर्जी को ग्रहण कर रहा हूं। सम्मान करने का मीनिंग है कि सामने वाले की पॉजिटिव एनर्जी को मैं ग्रहण कर रहा हूं। यह आश्रम है। तीर्थंकर की आराधना करने से तीर्थंकर का मान बाका नहीं होता है, लेकिन जो आराधना करता है उसके अनंत पाप का बंद होता है। अनंत तीर्थंकर को नमन जब करते हैं नमो अरिहंतानम से, तो उनके अनंत ऊर्जा को ग्रहण करते हैं। क्यों श्रीपाल का कुष्ठ रोग दूर हुआ और क्यों अपना मन का भी कुष्ठ रोग नहीं जा रहा है? उसका तो तन का नहीं हो गया। बाबा अमते ने एक बहुत सुंदर कविता लिखी थी अनुमन को लेकर के, मराठी में, देहाचे कुष्ठ रोगी अनुमन फुलवता, देहाचे कुष्ठ रोगी अनुमन फुलवता, पण समाजामध्ये मनाचे कुष्ठ रोगी। कुष्ठरोग का पहला सिम्टम्स क्या है? नो सेंसेशन, नो सेंसेशन। जब बॉडी में संवेदना समाप्त होती है तो बॉडी में कुष्ठरोग होता है, और जब मन का संवेदना समाप्त होती है तो मन कुष्ठरोगी होता है। ये आश्रम की बात चल रही है आपके साथ। अर्जुन माने जिसमें मुनगर पाने की भक्ति से, अवभाव से, प्रेम से उपासना करता था, उसने मुनगर पाने की शक्ति को वो ग्रहण कर रहा था। किसकी शक्ति को? बोलिए, किसकी शक्ति को? मुनगर पाने की। और मुनगर पाने की शक्ति का सिंबल क्या है? खुशी मना सकते हो, मनाते नहीं तुम लोग, मना सकते हो कि तुम्हारे देव के हाथ में शस्त्र नहीं है, इसलिए तुम्हारे अंदर में कभी किसी का मर्डर करने का विचार आता ही नहीं। और जिनके गुरु जिनके देव शस्त्रधारी है उनके मन में किसी को बचाने का विचार नहीं आता है। आश्रम बोला है एक पांच इंद्र से आश्रम हो रहा है। भाव के आश्रम की चर्चा मैंने लंबी चर्चा आपके साथ कर ली, मुझे लगता है कि आपने अपने भावों पर काम करना शुरू किया होगा कि मेरे भाव मेरा मन मेरा भाव मंगल रहे, शायद मेरा शरीर मंगल नहीं होगा, शायद मेरा वचन मंगल नहीं होगा, शायद मेरा मन मंगल नहीं होगा, लेकिन भाव मंगल हो जाए ना। आज नहीं कल, कल नहीं परसों, मन वचन काया को भी मंगल होना ही पड़ेगा। देवन में नहीं होगा कि मन की हैबिट है, वचन की हैबिट है, काया की हैबिट है, और हैबिट का कैरेक्टर चेंज करने के लिए टाइम लगता है, लेकिन भावों में हैबिट नहीं होती है। हैबिट कहां होती है? केवल स्ट्रक्चर में, लेकिन भाव चेंज हो सकते हैं। और कोई चंडकोशी जैसा होगा और उसके भाव बदलने वाला तीर्थंकर महावीर होगा तो उसका तो मन वचन काया भी एक पन्न में बदल जाती है। मंगल भावना इतनी ही संयम के प्रतिदिन तुम्हारे प्रतिदिन सबके प्रति इतनी ही भावना है, प्रार्थना है कि हमको कोई तीर्थंकर जैसी चेतना मिल जाए, गुरुदेव जैसा सानिध्य मिल जाए। अंतर के भाव ऐसे बदल जाए, ऐसे बदल जाए, ऐसे बदल जाए कि काया भी चेंज हो जाए। अर्जुन माने को सुदर्शन मिला, अर्जुन माने को पहले मुद्गर पानी बाद में सुदर्शन, ज्यादा परिचय मुद्गर पानी का कि सुदर्शन का? मुद्गर पानी का लंबे समय से मुद्गर पानी को ग्रहण करके रखा था, लेकिन सुदर्शन का सानिध्य मिला रामेश्वर थोड़ा सा आवाज मधुटा। सुदर्शन का सानिध्य मिला और अर्जुन माली का बोलो ठाकुर ने के लिए मारो ने के लिए 360 degrees 360 डिग्री चेंज हो गया। एक मिनट पहले का अर्जुन माली और एक मिनट बाद का अर्जुन माली द सेम, कोई शैडो है नहीं। किसके कारण से? सुदर्शन के कारण से। क्यों कारण? कारण सुदर्शन के फैक्ट्री में केवल तीर्थंकर का ही आश्रम है। सुदर्शन तीर्थंकर का ना किसी का आश्रय करता ही नहीं है, डायरेक्ट तीर्थंकर वहां पर नहीं है, सुदर्शन के थ्रू तीर्थंकर की ऊर्जा अर्जुन माली के पास पहुंची है, सुदर्शन के थ्रू पहुंची है, और सुदर्शन के थ्रू ऊर्जा पहुंचने के बाद अर्जुन माली की लाइफ चेंज हो जाती है। काश काश काश ऐसा आकाश हो जाए कि हम सब सुदर्शन जैसे हो जाए। होना चाहिए नहीं होना चाहिए? अरे भावना तो भावो है ना। ऐसा आश्रम मेरे अंदर हो जाए, का ऐसा अवसर आपके अंदर हो जाए कि केवल तीर्थंकर का आश्रम हो जाए। और यदि तुम्हारे अंदर मेरे अंदर तीर्थंकर का आश्रम होगा, 100% तीर्थंकर का आश्रम होगा, तो बाहर क्या जाएगा? जो आएगा पहले वो क्या करेगा? जो पुराना कचरा को निकाल देगा। पहला जब तीर्थंकर का आश्रय होगा तो क्या करेगा वो? पहले घर में खुशबू आई तो क्या करेगी? पहले की बदबू को निकालेगी। और सारी बदबू निकल जाने के बाद खुशबू आती रहेगी तो बाहर क्या जाएगी? खुशबू आएगी। पहले पल में खुशबू नहीं जाएगी, पहले पल में क्या निकलेगी? वो पुरानी गंदगी निकलेगी। और बाद में तीर्थंकर का आश्रय जारी रहेगा, खुशबू आती रहेगी, तो बाद में क्या निकलेगा? बाहर। ये निरंतर आश्रम का परिणाम। और आग्रह केवल इतना ही आप सभी से, इस बार परिश्रम परों का आश्रम करना है। क्या करना है? हेलो, बोल नहीं रहे आप? जो मैं बोला वो बोलो ना। किसका आश्रम करना है? और ऐसा परिश्रम परों का आश्रम करना, ऐसा परिश्रम परों का आश्रम करना, ऐसा परिश्रम परों का आश्रम करना कि जो भी तुम्हारे और मेरे संपर्क में आ जाए उसको परिश्रम परों का इन्फेक्शन हो जाए। आपके गुस्से का इन्फेक्शन दूसरे को होता कि नहीं होता है? आपकी वासना का इन्फेक्शन दूसरे को होता है कि नहीं होता है? आपके अहंकार का इन्फेक्शन होता है कि नहीं होता है? तो आपके श्रद्धा का इन्फेक्शन क्यों नहीं होता है? What is the reason? रीजन बिल्कुल समझ लो। तुम्हारी श्रद्धा में श्रीमंती नहीं है। क्या नहीं है? तुम्हारा क्रोध बहुत श्रीमंत है। तुम्हारा क्रोध कैसा है? मचबोर श्रीमंत है। अहंकार श्रीमंत है। वासना श्रीमंत है। और धर्म गरीब है। धर्म गरीब है। इस बार परिश्रम पर्व में ऐसा कुछ हो जाए, ऐसा कुछ हो जाए कि अपनी श्रद्धा श्रीमंत हो जाए और कषाय गरीब हो जाए। जाएंगे नहीं, गरीब हो जाए। मेरे कषाय गए क्या? नहीं, मेरे कषाय जाते तो मैं कहीं बैठता, लेकिन कषाय क्या हो गया? गरीब हो गए। प्रभुत जी की कषाय मेरे से भी गरीब हो गए। उनके कषाय बहुत गरीब हो गए। और जब कषाय गरीब होता है तो वासना श्रीमंत होता है। समझ रही मेरी बात को? प्रवर्तक से जी बस वो खिड़की में से भी दिख जाए तो दिखने वाले को लगता है हमें रहना सार्थक हो गया। ये सुन लो क्यों? अरे श्रीमंत को देख लिया तो श्रीमंत का एहसास हो जाता है। उनका कषाय गरीब हो गया, अपना कषाय श्रीमंत है। करना क्या है परिश्रम पर्व में? बोलो जी बोलो। मुझे था ईश्वर की जरूरत है, बोलोगे तब तो बोलो कि नहीं? बोलो जी बोलो है ना। कषाय क्या करना है? कषाय और धर्म। और जो श्रीमंत होता है वो फेस्टिवल करता है, गरीब फेस्टिवल नहीं करता। जिसका जो श्रीमंत होता है वो उसका फेस्टिवल करता है। जिनकी हिंसा श्रीमंत है वो हिंसा का फेस्टिवल करते हैं। जिनका अहंकार श्रीमंत है वे अहंकार का फेस्टिवल करते हैं। जिनका भय श्रीमंत है वो भय का फेस्टिवल करते हैं, और जिनका संयम श्रीमंत है वे संयम का फेस्टिवल करते हैं। परिश्रम पर्व ये संयम का फेस्टिवल है। संयम श्रीमंत होगा तो संयम का फेस्टिवल होगा। करोगे? बोलो जी बोलो, है ना? फिर सिखाया मैंने, है ना? परिश्रम पर्व श्रीमंत का होगा कि गरीब का होगा? परिश्रम पर्व श्रीमंत का होगा कि गरीब का होगा? और श्रीमंत परिश्रम पर्व की तैयारी में गरीब की शादी सुबह तय होती है, दोपहर में हो जाती है, शाम को सब रवाना हो जाते हैं। हेलो, प्लीज प्लीज प्लीज प्लीज प्लीज, है ना? जो कोई शेयरिंग करना ना, बखान के बात करते श्रीमंत की शादी याद दिलाऊं मैं आपको? अंबानी परिवार की शादी कितने दिन चली? 8 दिन चली। तैयारी कितने दिन चली? 8 दिन तो करने में गए, तैयारी में तो प्लानिंग कहते हम। इतना सारा बुकिंग करना, इतने सारे एजेंसी को हायर करना, तो कम से कम अपनी परिश्रम पर्व की शादी अंबानी जैसी तो होनी ही चाहिए, है ना? क्या लगता है आपको कि गरीब जैसी होनी चाहिए? देखो, मैं तो अरबपति का बेटा हूं। किसका बेटा हूं? मैं बहुत बार बोल चुका हूं आपको, बहुत बार बोल चुका हूं, और एक बार याद दिला दूं। गुरुदेव मुझे बार बार कहते थे, अरे खर्चे थोड़ा कम करा रहे, खर्चे थोड़ा कम करा रहे। और मैं गुरुदेव को उत्तर देता था, तुम गरीब के बेटे हो, मैं श्रीमंत का बेटा हूं। तुम्हारे गुरु रत्न ऋषि जी महाराज सर, मेरे गुरु आचार्य भगवान, और मैं गरीब के बेटे जैसा रहूंगा तो तुम्हारा इंसल्ट हो जाएगा। मैं किसका बेटा हूं? श्रीमंत का, गरीब का? और आप? हेलो, किसके बेटे हो? नगर में रहने वाला, गुरुदेव के पुण्य भूमि पर रहने वाला है। यदि बोले कि मैं गरीब का बेटा हूं तो गुरुदेव के साथ है ही नहीं। हम सब बोलो ना, एक बार मस्ती से बोलो, बोलो जी बोलो, हम किसके बेटे हैं? परिश्रम पर्व कैसा होगा? हाँ, श्रीमंत का होगा। और 1 लाख हृदय की लॉटरी है, 1 लाख की लॉटरी। पहला टिकट की लॉटरी 1 लाख की, दूसरी 51,000 की, तीसरी 31,000 की है, और भी बहुत सारी है। पर जिसके घर में परिश्रम पर्व श्रीमंती से होगा उसी की लॉटरी लगेगी। बाकी बात कल करूंगा, बाकी बात कल करूंगा। छोटी सी बात कर करके, पांचों इंद्रियों से मेरा आश्रय जारी है, तुम्हारा जारी है। आश्रय बंद हो सकता नहीं, कि आश्रय पुण्य का होना कि पाप का होना ये तय कर सकते हो। द्वेष से पाप का आश्रय होता है और राग से पुण्य का आश्रय होता है। जल्दी से बोलो, नफरत से पाप का आश्रय होता है, बोलो, और प्रेम से पुण्य का आश्रय होता है। किसे? आगे एक सूत्र है, ध्यान में रखना, ध्यान में रखना। सत्ता से प्रेम किया तो पाप का आश्रय, हाँ बोलो बोलो बोलो बोलो। अजित दादा पाटिल को याद करो, नेताओं को याद करो, सत्ता से प्रेम किया तो पाप का आश्रय, धन से प्रेम किया तो मम्मन सेठ का आश्रय, शरीर से प्रेम किया तो कुष्ठ रोग का आश्रय। मैं जो भी वाक्य बोल रहा हूं उसका विश्लेषण जब स्वयं रहकर करूंगा। नाम दे देता हूं, आप लोगों ने कहानी सुनी हुई नहीं है, इन्होंने सुनी हुई है, जो परमानेंट मेंबर है उन्होंने सुनी हुई है, तुम तो विजिटर मेंबर हो, न्यू कॉमर्स है सारे, बहुत सारे, या न्यू आर्ट्स ऑफ कॉमर्स कॉलेज चल रहा है, इसलिए न्यू कॉमर्स कॉलेज सारे कमर न्यू ही है। सनत चक्रवर्ती का नाम है, सनत चक्रवर्ती की कथा है, और सनत चक्रवर्ती ने अपने रूप से प्रेम किया, किससे प्रेम किया, शरीर के रूप से प्रेम किया, और परिणाम में कुष्ठ रोग हुआ। देव से प्यार करोगे तीर्थंकर देव से प्यार करोगे, आराध्य गुरुदेव से प्यार करोगे, आराध्य गुरुदेव के वाणी से प्यार करोगे, तो पुण्य का आश्रय होगा। इनसे प्यार करना, किनसे प्यार करना, हेलो, किससे? मैं बहुत बार आप लोगों ने सुना हुआ स्टेटमेंट देकर के रुकता हूं, मैंने वैराग्य से दीक्षा नहीं ली, डिक्लेयर, मैंने ज्ञान से दीक्षा नहीं ली, डिक्लेयर, मैंने कपड़े पहने दीक्षा ली तो केवल मेरे गुरुदेव की मोहब्बत में ली, इसलिए मेरे पास आने वाले किसी को वैराग्य आता ही नहीं। आपको मेरे परिसर में एक वैरागी नहीं मिलेगा, अनुरागी भरपूर मिलेंगे, मेरे आसपास में जो फौज है किसकी है, सारे अनुरागी की फौज, एक भी तुमको उसमें वैरागी मिल जाए तो देख लेना हो कि तीर्थ शिशु मा सख पास आया हुआ, वो थोड़ा वैराग्य से आया हुआ, फिर वो थोड़ा वैराग्य से आया, थोड़ा प्रेम से आया, मैं 100% केवल मैंने मोहब्बत में दीक्षा ली। कैसी लगती मेरी, हेलो, अच्छा है ना? तो ऐसा प्यार करो देव गुरु से कि देव गुरु से तुम श्रीमंत हो जाओ। रक्षाबंधन का त्योहार है और तुम्हारे लिए रक्षाबंधन अब इवेंट हो गया है, इस सारे इवेंट इंडस्ट्रीज ने, सारे इवेंट इंडस्ट्रीज ने भारतीय संस्कृति का इतना नुकसान किया है कि जितने श्रद्धा और प्रेम के त्योहार थे उनको बिजनेस बना दिया है, उसमें की सारी संवेदनाएं समाप्त हो गई। शो इतना बढ़ गया कि इमोशन को जगह ही नहीं रही, इतने इंप्रेशन में लगे लोग, इतने इंप्रेशन में लग गए कि इमोशन गायब ही हो गई। मेरे से सहमत हो कि असहमत हो, है ना? और इसलिए यहां पर अनुष्ठान है रक्षाबंधन त्योहार का, यहां इंप्रेशन नहीं है, इमोशन पक्की है, यह डिरेक्शन नहीं है, डिवोशन पक्का है। ये प्रयास करता हूं हर साल कि भाई बहन के इस रिश्ते में ऐसी ताकत आ जाए, ऐसी ताकत आ जाए, ऐसी ताकत आ जाए कि बहन की राखी भाई के मन को किसी ओटीटी किसी नेटफ्लिक्स के चक्कर में फंसा करके उसके भाभी से भाई को दुख दी। वासना के दलदल से तुम्हें बाहर लाना हो तो बहनी ला सकती है। और ये त्योहार उसका है। और आज सबसे बड़े दुश्मन जिंदगी के कोई है तो दो दुश्मन बहुत भयंकर हो गए। अहंकार पहले भी था लेकिन इतना जहरीला नहीं था। वासना पहले भी थी पर इतनी भयंकर नहीं थी। और इसलिए मुझे लगता है कि पहले से अधिक रक्षाबंधन का त्योहार अधिक विधि पूर्वक होने की जरूरत पड़ गई। और वह अनुष्ठान प्रवर्तक सिंह जी के सानिध्य में 28 तारीख को ही होगा, संडे को नहीं होगा। ये पूर्णिमा का त्योहार है, ये पूनम है। क्या है? रक्षा नारायणी पूर्णिमा है। और तुम्हारे कहने से आसमान में पूनम का चांद नहीं आता है। ये तुम्हारे कैलेंडर का त्योहार नहीं है। ये श्रावण नक्षत्र में चंद्रमा आने के बाद का दिन का उत्सव है। और ये सारे इवेंट कल्चर ने इस पूर्णिमा को गायब कर दिया। और कई जगह तो रक्षा पूनम कृष्ण पक्ष में मना लेते हैं। पूनम के बाद जब भी त्योहार मनाओगे रक्षाबंधन का तो मोदी पक्ष शुरू हो जाएगा। पूर्ण चंद्रमा के दिन है 28 को है। ये पूर्ण चंद्रमा का उत्सव है। ये हीन और क्षीण चंद्रमा का उत्सव नहीं है। इसलिए यहां त्योहार कब होगा? 28 तारीख को ही होगा। पहले मेरा सोच था कि व्याख्यान यहां कर लो, अनुष्ठान आनंद धाम पर कर लो, लेकिन वो बैठा है ना उधर। कौन? बाबा सेठ। नहीं, यही करना है। उठे बैठी ना कोई, उठे बैठी ना कोई। मैंने रिपोर्ट ली कि इसके पहले रक्षाबंधन पर कितने लोग आते हैं। आलोक प्रसिद्ध जी, रक्षाबंधन पर कितने जोड़े आते हैं? मैक्सिमम से मैक्सिमम 500 से 700। तो 500 से 700 की व्यवस्था तो वहां हो सकती है। क्या लगता आपको इस बार में कितने आएंगे? सारे मिलकर के प्रवीण ऋषि को अकेला पाल रहे। कोई मेरे फेवर में नहीं। क्या नहीं मेरे फेवर में? सारे उसका फेवर कर रहे हैं। अच्छा, वो घेवर वो देने वाले से तुम उसका फेवर कर दे। तो चलिए, कार्यक्रम कहां होगा? यहीं पर होगा। पहले 9:55 तक आपकी धुलाई करूंगा। धुलाई करने के बाद ही आयरन कर सकते हैं, बिना धुले हुए कपड़े पर आयरन? हाँ, तो रक्षाबंधन के आयरन पहले आपकी धुलाई होगी और फिर आयरन होगा। लेकिन इस बार की स्त्री ऐसी करनी, स्त्री ऐसी करनी कि कम से कम 1 साल तक तो स्त्री बने रहनी चाहिए। हेलो, पक्का? मंगल पाठ। मंगल
1: उत्सर्गा क्षयते छिद्यन्ते विघ्नवलय मन प्रसन्नतामेति पूज्यमाने जिनेश्वरे सर्वारिष्ट प्रणासाय सर्वाभिषदायिनि सर्वलब्धि निदानाय श्री गौतमाय नमो नमो गुरुदेव की

अरिहंतों का चलना, सिद्धों का चलना, साधुओं का चलना, दया धर्म का चलना, चार शरण।

कोमल है कमजोर नहीं तू, शक्ति का नाम ही नारी है, जग को जीवन देने वाली मौत भी तुझसे हारी है। हे घोषवाक्य लिहिला है संगीता अकोलकर यांनी। ऐकत रहा रेडिओ नगर 90.4 FM, आवाज तुमचा।